0: and inspiring reminders as we discover the mercy, wisdom, and character of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a mercy sent to all of mankind, only on Inspire FM.
1: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
2: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
3: Islam strictly forbids mistreating animals. The Prophet, peace be upon him, taught that a woman was granted paradise just for giving water to a thirsty dog using her shoe.
4: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
5: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001234,
6: आजकल एक नया फ्रॉड चल रहा है। आपको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कंपनियों और मुख्तलिफ बैंकों के नाम से टेलीफोन करते हैं और आपको लॉटरी जीतने की खुशखबरी देते हैं, और फिर जोंसा देकर आपसे रकम वसूल करके भाग जाते हैं। ऐसी तमाम फोन कॉल से होशियार रहें। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

0: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
1: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fasts and du'as. Ameen.
2: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
0: Rishta Networking. आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं, ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा है। 12 सितंबर बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सपहर 4:30 बजे तक एम्बरली गार्डन माखी गोर्स फार्म हाई रोड बेडफर्ड MK453AB में सिर्फ खवातीन की नशस्तों का एहतमाम किया गया है जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे।

0: हब LU1 2QX पर हमसे मुलाकात कर सकते हैं। पूरी उम्र काम आने वाली ये क्वालिफिकेशंस हासिल करके बेहतर बनाने के लिए अभी अप्लाई करें।
1: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
2: हक की आवाज़ कभी दबती नहीं, कभी झुकती नहीं, कभी मिटती नहीं। एतदाल, हुर्रियत फिक्र और सच्चाई का परचम, आइए सुनिए वो आवाज़ जो दलील से लबरेज, कुरान और सुन्नत की रोशनी से मुनव्वर और हक की गवाही देती है। मैं हूँ इमाम हाफिज इजाज़ अहमद, आपके सामने पेश करूँगा प्रोग्राम आवाज़ हक में हक की आवाज़, एक ऐसा पैगाम जो दिलों को बेदार करे, जहनों को रोशन करे। हर सोमवार 11 बजे ओनली ऑन इंस्पायर FM 105.1।
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
4: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran, Sayyid Abul Ala Maududi. Isme tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Saleem aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. इस काम में जिन अफराद ने भी हिस्सा लिया है उनके लिए दुआए खैर की दरख्वास्त है।
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم।
4: पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मर्दूद से।
5: بسم الله الرحمن الرحيم।
4: अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है।
5: मैं

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
1: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए। हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे ओनली ऑन इंस्पायर FM।
2: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People.

0: करोड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोर्ट यूके ऑफिस 03001234
1: با ادب با ملاحظہ

0: Did you know that over 361,000 children die every year due to lack of clean water? Clean water is not a luxury, but a basic human right. UKIM is working to end their suffering. By providing clean and safe water, make a difference. Provide clean and safe water with UKIM. For donations, call now or visit ukim.org.
1: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
2: But
1: it costs £10 per inch.
2: And that's too expensive?
1: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
2: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
3: For details, click on inspirefm.org, then advertise. From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
4: Last time on Akhri Mojza.
5: आप कोशिश करें किसी बिल्डिंग में जाएं तो जो दरवाजा खोलने वाले गार्ड्स वगैरह होते हैं ना, सलाम में आप पहल कर दो। किस लिए? वक्फत जनाह का लिमन तबीअका मिनल मुमिनीन। रसूल का क्या मकाम और किसी आम मुसलमान का क्या मकाम? और उनको कहा जा रहा है आप उनके जज्बात का ख्याल रखें, उनके ऊपर आप, यानी क्योंकि अगर थोड़ी सी भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा सख्ती से बात कर देंगे तो किसी की तो दुनिया, जिंदगी खत्म हो गई उसकी तो।

0: खिड़की से अंदर घुसूं या छत से अंदर घुसूं, दरवाजे से मत जाऊं। दरवाजे से जाऊंगा तो बैड लक, ओके, बदशगुनी होगी। तो वो जाया करते थे पिछले दरवाजे से या खिड़की से या किसी और रास्ते से, ताकि वो जो बरकत है घर से निकलने की वो ज़ाया ना हो जाए। तो अल्लाह ने कहा लैसल बिर्रु बि अन तअतुल बुयूता मिन ज़ुहूरिहा, इसमें कोई अच्छाई नहीं है कि तुम पीछे से घरों में वापस जा रहे हो। वलाकिन्नल बिर्रा मन तक़ा, लेकिन असल अच्छाई यही उसी की होती है जिसको सिर्फ खुदा का खौफ होता है, खुदा का लिहाज होता है, इत्तका। वअतुल बुयूता मिन अबवाबिहा, और घरों में जाया करो दरवाज़ों से, घरों में जाया करो दरवाज़ों से। ये ताबीर अल्लाह ताला ने इस्तेमाल की, लेकिन मज़े की बात यह कि यह सिर्फ इसी मामले के बारे में नहीं थी, ये असल में एक मुहावरा था, दरवाजे से आना। لِأَلَّا يَعْلَمَ النَّاسَ أَنِّي امْرُؤٌ أَتَيْتُ مَعِيشَتِي مِنْ بَابِهَا، شاعر کہتا ہے، شاعر کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں ایسی زندگی جیوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں ہمیشہ دروازے سے آتا ہوں۔ شاعر یہ کہہ رہا ہے، یہ محاورہ تھا ان کا، یہ بندہ دروازے سے آتا ہے، یہ جو بھی کام کرتا ہے دروازے سے آتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ انگلش میں ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا بائی ہک اور بائی کروک، اور ایک اور فریز ہوگا، ایک اور محاورہ انگلش میں ہی ڈز ایوری تھنگ بائی دا بک، جو بائی دا بک کرتا ہے نا، یعنی جو کرنا ہے وہ صحیح طریقے سے کرنا ہے، اس میں پیچھے ادھر سے ادھر سے معاملہ نہیں کرنا، اور کسی کہی سنی بات پر عمل کر کے نہیں کرنا، جو واضح بات ہے اس پر عمل کرنا ہے، اور جو صحیح طریقہ کرنے کا اس سے کرنا ہے۔ تو اس کے لیے محاورہ ہوتا ہے دروازے سے آنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا نا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اس زمانے کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اس زمانے میں کیا مسئلہ تھا؟ حج کے لیے نکلے، اب پچھلے دروازے سے گھس رہے ہو، لیکن اس کے بعد یہ کسی کا مسئلہ ہونا نہیں تھا، وہ تو مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن قرآن تو ہمیشہ کے لیے ہدایت ہے نا، تو اس دروازے میں داخل، دروازے سے داخل ہونے کے لیے، اب اس میں میرے لیے کیا ہدایت ہے، آپ کے لیے کیا ہدایت ہے؟ وہ قصہ تو ختم ہو گیا، میرے لیے کیا ہدایت ہے؟ اب میں جو بھی کروں، جس معاملے میں بھی میں پڑھوں، جس جشن کو بھی میں بناؤں، کوئی بھی کام کروں، کیسے کروں؟ دروازے سے، صحیح معلومات کے بعد، صحیح طریقے سے، قانون کے مطابق، اخلاق کے مطابق۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تو ایک محاورے سے ایک اس وقت کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، اور ہمیشہ کے لیے بھی ایک ہدایت مل گئی ہمیں، سبحان اللہ۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ۔ سورہ کہف میں اصحاب الکہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی، اور جب بیان کیا ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے کہ پانچ تھے اور چھٹا والا کتا تھا۔ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ اور کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں کتا تھا۔ لیکن یہاں پہ اس کے بعد کہا ہے رجمن بالغیب، رجمن بالغیب، رجم جانتے ہوں گے آپ لوگ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حج پہ بھی رجم ہوتا ہے نا۔ رجم کسے کہتے ہیں؟ کنکریاں پھینکنے کو۔ غیب کا لفظ بھی آپ جانتے ہوں گے، غیب کیا ہوتا ہے؟ اندیکھی، جو چیز نہیں دیکھ سکتا انسان وہ غیب میں ہے۔ غیب کا لفظ اندھیرے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو چیز آپ نہیں دیکھ سکتے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک اور منظر ہے، اس منظر میں ہر تعبیر میں، ہر محاورے میں ایک تصویر کھینچی جا رہی ہوتی ہے، اس تصویر کو سمجھ لو، محاورہ سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ فرض کریں صحرا میں کوئی ہے، اور وہ ایک ٹارگٹ کو اس نے کنکری سے ہٹ کرنا ہے، اس کا ایک کوئی کسی چیز کو اس نے ہٹ کرنا ہے، اور اس کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں، لیکن اس کو پتہ نہیں وہ ٹارگٹ ہے کہاں اندھیرے میں، تو وہ ہر جگہ بس کنکری پھینک رہا ہے، اور کہیں سے اس کو ٹک کی آواز آئی تو کہے گا آہ لگ گیا۔ اور اس سارے پروسیس کو آپ کیا کہو گے؟ رجمن بالغیب۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے یخرسون، تکے مار رہے ہیں، بات تو یہی تھی نا کہ وہ تکے اندازے کر رہے ہیں علم کے بغیر، لیکن عام الفاظ میں استعمال کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے محاورہ استعمال کیا رجمن بالغیب، یعنی اندھیرے میں، اندیکھے میں کنکریاں پھینک رہے ہیں، کیونکہ اندازہ لگانے سے جو فائدہ ہوتا وہ کم ہوتا، और इस मुहावरे से जो फ़ायदा निकल रहा है वो ज़्यादा है, उस फ़ायदे को समझने की कोशिश करते हैं।
1: देखिए, अगर असहाबुल कहफ के बारे में मैं कहूँ कि वो तीन थे पूरे एतमाद से, और के मैं गारंटीड 100% मैं कहता हूँ 5 थे, कोई और कहे तुम लोगों को नहीं पता, मुझे पता है 7 थे, 7 हो सकता है 3 वाला सही हो, मुमकिन है कि नहीं? मुमकिन है। हो सकता है 5 वाला सही हो, ये भी मुमकिन है। हो सकता है 7 वाला सही हो, ये भी मुमकिन है। हो सकता है वो सारे गलत हो, वो 4 थे, ये भी मुमकिन है। मुमकिन तो उसमें से सारे हैं, लेकिन इन मालूमात से क्या आपके दीन पे कोई फ़र्क पड़ा?
0: अगर आपको पता चल जाए कि वो 4 थे या 5 थे या 7 थे या 8 थे,
1: इससे आपके ईमान पर, अल्लाह ताला के साथ आपका जो रिश्ता है उसमें, और इस किस्से से जो हिदायत हमने लेनी है उस पर कोई असर पड़ा?
0: बिल्कुल भी नहीं,
1: उसका तो बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ा। तो ये अंदाज़ा लगाना बेकार है। लेकिन दीन के किसी मामले में भी अंदाजे लगाना, इसकी ताबीर अंदाजे लगाने से नहीं, कंकरियां फेंकने से क्यों की गई? क्यों? क्योंकि जब आप कंकरी फेंक रहे होते हैं तो एक तो आप टारगेट को हिट नहीं कर रहे, लेकिन ऐन मुमकिन है कि आप किसी और चीज़ को हिट कर रहे हो, आप नुकसान फैला रहे हो, आप एक कल्चर बना रहे हो जिसमें लोग दीन के बारे में बात करते हुए हर तरफ कंकरियां फेंकते।
0: तो खैर, मैं कह रहा था कि अगर आपने दीन के मामले में हर तरह के तुक्के मारने शुरू कर दिए, तो ये सिर्फ ये नहीं हुआ कि कोई सही था कोई गलत था, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, अब नुकसान शुरू हो जाएगा, किसी का किसी ना किसी का नुकसान होगा, क्योंकि दीन के मामलात में सबसे ज़्यादा हकीकत की बुनियाद पर बात करनी चाहिए, और जिस बात के बारे में इल्म नहीं है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? अगर पूरा जाज़िब ना हो, यानी 100% आपकी बात मालूमात नहीं है, तो इस बात में बिल्कुल भी हिचकिचाना चाहिए कि मुझे नहीं पता, अल्लाह आलम। और इस किस्से के बारे में तो मैं बहुत सारी बातें आपको बता दूं, लेकिन एक बात सिर्फ जो मैं चाहता हूं आपके जहन में रहे इसके बारे में, कुल रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम, अल्लाह ताला कहते हैं कहो मेरा रब इनके अदद के बारे में ज़्यादा जानता है। बिइद्दतिहिम, इद्दत का लफ्ज़ अजीब लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया। इद्दत के लफ्ज़ के दो मायने हैं, एक मायना इद्दत का है अदद, और एक मायना इद्दत का है वक्त का गुजरना, और दोनों के बारे में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करके एक तीर से दो शिकार, मेरा रब ज़्यादा बेहतर जानता है कि इनके अदद क्या थे, कितने थे और कितने अरसे तक थे, वो भी वो बेहतर जानता है। बेइद्दती है, दोनों एक लफ्ज़ में। और फिर इद्दत का लफ्ज़ अरबी में मुअन्नस है, जिस तरह उर्दू में मुज़क्कर मुअन्नस होता है ना, अरबी में भी अल्फाज अस्मा मुज़क्कर और मुअन्नस होते हैं, तो इद्दत का लफ्ज़ मुअन्नस है। तो कहा मा यालमु, अगर कहा होता मा यालमु हा इल्ला कलील, कुर रब्बी आलमु बिइद्दतिहिम मा यालमु हा इल्ला कलील, अगर ये कहा होता तो कहा होता कि मेरा रब उनके अदद को ज़्यादा जानता है, और उस अदद को सिवाय कुछ के कोई बहुत कम लोगों के अलावा और कोई नहीं जानते। लेकिन ये अल्फाज अल्लाह ने इस्तेमाल नहीं किया, अल्लाह ने कहा मा यालमु हुम इल्ला कलील, मैं यालमु हाँ नहीं, मैं यालमु हम, यानी अल्लाह ताला ने मज़मून बदल दिया। लोगों की दिलचस्पी थी कितने थे कितने अरसे तक थे, अल्लाह ने कहा इनकी हकीकत यानी ये लोग कौन थे कैसे थे इनसे हमें क्या सीखना चाहिए था, उसके बारे में तो बहुत ही कम लोग जानते हैं, यानी मज़मून बदल दिया अल्लाह ताला ने, बेकार मज़मून से फ़ायदेमंद मज़मून की तरफ, रजबन बिलग़ैब से हक की तरफ। और ये कुरान का एक उसलूब है, लोग बात करते हैं बेकार की फजूल किस्म की बातें, और उस पर पूरी कमेंट्री दी अल्लाह ताला ने इस किस्से में। ये बहुत अहम किस्सा है कुरान का, बहुत ही अहम किस्सा है, और ख़ासकर ये अल्फाज इसमें बहुत ज़्यादा हिदायत है। वो कहते हैं कि तीन थे, चौथा कुत्ता, पांच छठा, इसमें क्या फ़ायदा, क्या क्या मिलेगा आपको इससे? इससे आपको अल्लाह ताला के बारे में एक बड़ी अहम हकीकत समझ में आएगी कि कुरान सिर्फ मालूमात नहीं दे रहा, कुरान सोचना सिखा रहा है, और जिसकी सोच बदल जाती है ना उसके सवाल बदल जाते हैं। आपके सवालों से आपकी सोच के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। मैं साइकोलॉजी का तालिब इल्म हूँ, जब मुझसे कोई स्टूडेंट सवाल पूछता है ना, तो मैं सिर्फ जवाब के बारे में नहीं सोच रहा होता, मैं उस स्टूडेंट के बारे में सोच रहा होता हूँ कि इसका सवाल आया कहाँ से, इसके सवाल के पीछे क्या है, क्योंकि सवाल से इंसान की शख्सियत के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है।
1: मैं अरबी जब पढ़ा रहा होता हूँ तो अरबी के बारे में भी स्टूडेंट्स कभी कभी सवाल पूछते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में सवाल पूछा, उसके सवाल से मुझे पता चल जाता है कि इसके पीछे तीन स्टेप पहले इसकी कन्फ्यूजन कहाँ है। जिस तरीके से उसने सवाल पूछा है ना, मुझे अंदाज़ा हो जाता है पीछे क्या हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर अल्लाह ताला एक बड़ी अजीम हिकमत सिखा रहे हैं, उसकी मैं अजीब सी मिसाल है लेकिन मैं आपको मिसाल के ज़रिए बात समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्ज़ करें कोई बिज़नेस प्रोफेसर है, बहुत मशहूर, उसने बिज़नेस चलाया, बहुत कामयाब हुआ बिज़नेस की दुनिया में, फिर उसने बिज़नेस से रिटायर करके कहा चलो मैं अब आने वाली नस्ल का कुछ फ़ायदा करना चाहता हूँ, तो उसने कोई बिज़नेस मास्टर्स प्रोग्राम था उसमें वो प्रोफेसर लग गया और एंटरप्रेन्योरशिप उसने पढ़ानी शुरू कर दी कि मैं इन लोगों को भी कुछ सिखा दूँ। प्रैक्टिकली किताबी नॉलेज तो ये लेते हैं लेकिन क्योंकि मैं उस दुनिया से हूँ तो मैं उनको कुछ चीज़ें जो हकीकत की दुनिया की हैं बिज़नेस से, उनके बारे में कुछ सिखा दूँ। तो उसने एक पूरी यानी अपने तजुर्बे का खुलासा उसने एक कहानी के ज़रिए अपने स्टूडेंट्स को सिखाया कि देखें, फ़र्ज़ करें कोई एक दुकान खोलना चाह रहा है, उसको पहले देखना पड़ा कि मैं कौन सी लोकेशन में खोलूँ, प्रोडक्ट कहाँ से लूँ, टैक्सेस कैसे मैं कैलकुलेट करूँ, और क्या नाम है, सिक्योरिटी का इंतज़ाम कैसे करूँ, स्टाफ को कैसे हायर करूँ। उसने पूरी एक किस्सा बनाया एक बिज़नेस के शुरू करने का ना, उसमें किस किस चीज़ का ख्याल करना पड़ता है, कौन सी चीज़ों को कैलकुलेट करना पड़ता है, वो सारी मालूमात उसने बड़ी खुशी से उसने स्टूडेंट्स के सामने पेश की बेहतरीन हिस्से के ज़रिए ऑर्गेनाइज्ड। और उन स्टूडेंट्स जो बैठे हैं उनमें से एक ने हाथ उठाया, सर एक सवाल है, जो ये बिज़नेस खोला है तो किस रंग के सॉक्स पहनने चाहिए जाते हुए? और उठाए, अच्छा लंच में बर्गर खाया जाए हर रोज़ बिज़नेस में या फिर पिज़्ज़ा खाएं? सवाल तो है, किसी ना किसी तरह बिज़नेस से मुतालिक तो है, लेकिन बिल्कुल बेकार किस्म का सवाल जिसका इस असल मकसद से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई भी ताल्लुक नहीं है। और यही उल्टी उठपटांग हरकत हम दीन के साथ भी कर सकते हैं, और जब हम दीन के साथ करते हैं उसको कहेंगे रजमन बिलगैब। हर तरफ कंकरियां फेंक रहे हो, मुझे इसका भी जवाब चाहिए, इसका भी जवाब चाहिए, इसका भी जवाब। सर मेरा किसी ने मुझसे कुछ दिन पहले पूछा था क्या जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को देखा है? मैंने कहा ना मुझे पता है, ना मैं पता करूंगा, ना मुझे पता करने में कोई दिलचस्पी है, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल है, कैसा इंसान होगा जिसको ये पता करना है? आपको आप कितनी इल्म की दुनियाओं से फारिग होकर आपको ये सवाल मिला, इसका जवाब मिल जाए तो मेरे मसले हल हो जाए। या फिर होता यह है कि किसी की जिंदगी में इतने सारे मसले होते हैं जो वो कहता है ये सारे मसले छोड़ो मैं किसी पागल सवाल के पीछे पड़ जाता हूं। ये मेरा डायग्नोसिस होता है ऐसे लोगों के बारे में। सर बड़ा अहम सवाल, और फिर लोगों को अपने सवालों से बड़ा प्यार होता है, कहते हैं सर मेरे पास एक ऐसा सवाल है, मैंने बड़े उलमा से पूछा है, कोई मेरा जवाब नहीं दे सके, आपसे पूछूं? मैंने कहा नहीं, मुझे पता था। मैंने कहा मुझे नहीं पता था। ये एक बहुत फलसफी ताबीर है और ये बहुत अहम है हमारे ईमान के लिए। अम अप्रमु अम्रन फइन्ना मुब्रिमून, इसका मुहावरी तर्जुमा होगा क्या उन्होंने फैसला कर लिया है तो फिर हम भी फैसला कर चुके हैं। अगर उन्होंने फैसला कर लिया है तो हम भी फैसला कर चुके हैं। लेकिन इब्राम का लफ्ज अब्रमा, ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है रस्सी के लिए। जब आप देखें, जब जूते के तस्मे बांध रहे होते हैं तभी आप रस्सी बांध रहे हो, ठीक है, डोरी बांध रहे हो, लेकिन पुराने ज़माने में जब तामीर करते थे ना तो सीमेंट तो था नहीं, तो जो सतून और जो दो कॉलम होते थे ना लकड़ी के, उनको जोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल की जाती थी? रस्सी। लेकिन वो ऐसे जूतों वाली रस्सी नहीं होती थी जिसको आप एक दफा खींचो तो वो सारी खुल जाएगी, उसको वो दो दफ़ा गिरा करके, कई दफ़ा इस तरफ लपेट के, उस तरफ लपेट के, बहुत ज़्यादा टाइट करके उसको वो बंद करते थे। वो ऐसी गिरा जिसका मकसद है कि इसको कभी ना खुलना हो। तो दो तरह की गिरा होती है, एक गिरा होती है जो आप बांधी तो है लेकिन आपको पता है आपने बाद में खोलनी है, और एक ऐसी बांधी है इस मकसद से बांधी कि इसको कभी भी नहीं खोलना। जो रस्सी ऐसे बांधी जाए
0: कि आपने कंस्ट्रक्शन के लिए बांध दिए, उसको खोलने का कोई इम्कान नहीं है, उसको इब्राम कहते हैं। अम अप्रमो अमरन से ताबीर यह निकाली है कि कुफर के मामले में रसूल की बात ना मानने के बारे में कुछ कुरैश ने अगर इतना पक्का फैसला कर लिया है कि उन्होंने इस फैसले के मामले में अपनी रस्सी बांध ली है, पक्की कर लिया रस्सी, बिल्कुल एकदम फैसला कर लिया है इन्होंने इस्लाम कभी कुछ भी हो जाए कबूल नहीं करना, साबित करो ना करो, हक है नहीं है मुझे कोई फिक्र नहीं, मैंने नहीं बनना मुसलमान, कर लो जो करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, जो इस हद तक ढीठ हो जाते हैं कि मुझे कोई फिक्र नहीं कि ये सच है या गलत है, सही या गलत है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, एक बात कान खोल के सुन लो, मैंने ये बात नहीं माननी, इतना समझ लो। तो होते हैं ऐसे लोग के नहीं, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर ऐसे लोगों ने इतनी बड़ी कमिटमेंट कर ली है, अपने अपने अपना पक्का इरादा दिखा दिया है, तो फिर ये सुन ले, मैं भी अपना इरादा पक्का कर चुका हूं, अगर रस्सी उन्होंने बांध ली है तो फिर मैंने भी बांध ली है, फहिन्ना मुबरिमून। अब यहां पर एक फलसफी सवाल आता है, आपने सुना होगा, उसका पूरा जवाब मैं अभी नहीं दूंगा, लेकिन जितना उसका जवाब इस आयत से मुतालिक है उतना उतनी बात मैं आपसे करूंगा। आपने सुना होगा, अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे, जिसे चाहे गुमराह कर दे। आज से 10 साल बाद जरूर सबको बताओ ये बात, ये आम हो जाए, और ये मुमकिन, ये कोई गैर मुमकिन किस्म की बात नहीं है, कोई ये बहुत ही ख्वाबों वाली बात नहीं है, ये बहुत मुमकिन है, कोई ऐसा बड़ा मसला, कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है ये। और ये मैं नहीं कह रहा कि ये सब कर सकते हैं, लेकिन अगर इस मुल्क में करोड़ों में से हजारों भी कर सकते हैं, लाखों भी कर सकते हैं, तो वो लाखों फिर पूरी जनरेशन को बदल सकते हैं। तो हम सब हमारी मैंटेलिटी में हो गया ऑल और नथिंग, या तो सब करें या कुछ भी नहीं हो रहा। और दुनिया में जो सारी तब्दीली आई है ना, वो कुछ लोगों के हाथों से आती हैं, सबके हाथों से नहीं आती, बाकी सब फॉलो करते हैं।
2: सब्सक्राइब नाउ टू द बेगिना यूट्यूब चैनल टू वॉच द रेस्ट ऑफ दिस सीरीज एंड मोर ग्रेट कंटेंट फ्रॉम उस्ताद नुमान अली खान। कमिंग अप नेक्स्ट टाइम ऑन आखिरी मौजज़ा।
1: कोई भी रो, कोई भी किसी किस्म की भी म्यूजिक वीडियो बना लो, ऑडियंस मिल जाए, मैं कुछ भी कर, किसी भी वादी में मैं उतरने को तैयार हूं। और इस ताबीर से इंसान का एक मुकाम पहले ऊंचा होता था, लेकिन लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में वो अपने आप को गिरा रहा है, वो नीचे गिरता चला जा रहा है। और अब हम क्योंकि एल्गोरिदम के ज़माने में हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब इस ज़माने में है, एल्गोरिदम में क्या होता है, जो भी इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है, और जो इन्फ्लुएंसर बन जाए लोगों की फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है, इज़न्ट इट? जो भी इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है वो देखता है कि इंगेजमेंट कम हो गई है, व्यूज़ कम हो गए हैं, मुझे और देखना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, फलाने के व्यूज़ ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, उसके व्यूज़ इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं कि वो इस चीज़ के बारे में बात करता है, मुझे भी इस चीज़ के बारे में बात करनी होगी, मुझे भी ये कुछ करना होगा। यानी अब आपका मकसद, लोग आपके पीछे आ रहे हैं क्योंकि आप उनके जज्बात से खेल रहे हो, और अब आप लोगों के पीछे भाग रहे हो, आप चेक करते हो उनके जज्बात किस तरफ जा रहे हैं, मैं भी उस तरफ जाऊँ। يتبعهم الغاوون لم تر انهم في كل واد يهيمون سبحان الله। कितने 1,500 साल पुरानी ताबीर, और आज आप सोचो आज क्या हो रहा है, कितनी 100% एक्यूरेट ताबीर अल्लाह ताला ने इतने कम अल्फाज में बयान की है इस मुहावरे के जरिए।
3: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.